0: कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलन लई नहीं सी आख्या, पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनूं इह कहिंदे होए बहुत ही मान महसूस हो रहा है कि असीं कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी सहायता करदे हां जिसदे ओ सचमुच ही हकदार हन। तुहाडा अपना वकील, वकील ब्रिज मोहन। कॉन्टैक्ट अस एट ब्रिजमोहन.com।
1: Get ready! GTA, are you-

0: क्या बात है, बड़ा शानदार गीत ते सुन के तुसी भी आनंद ले रहे हो। रेडियो उड़ान
1: फैशन आईक्यू प्रोग्राम दे सिसे नु स्पोंसर कर रहे ने फैशन आईक्यू प्रीमियम क्लोथिंग ब्रांड फैशन आईक्यू। फैशन आईक्यू ते तुसी हैवी ब्लैंकेट, रजाई वाले ब्लैंकेट, बाय वन सेकंड 25% ऑफ, फाइव बेडशीट ओनली $50 ते मेंस सेक्शन दे विच मेन सूट दे उपर तुसी बाय वन सेकंड 25% ऑफ, लेडी सेक्शन दे विच लेडी सूट 25 तो लेके 50% फ्लैट ऑफ दे उपर तुसी ले सकदे हो लेडी सेक्शन दे विच कुछ भी। और नाल दी नाल 4 पीस दा ਲੈਗਿਸ ਸੈੱਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 4 ਪੀਸ ਦਾ ਲੈਗਿਸ ਸੈੱਟ ਓਨਲੀ $175 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਥੀਮ ਵੈਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਟੇਲਰ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨ ਹਾਊਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਉਡਾਨ ਦਾ ਰੈਫਰ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਿਫਟ ਮਿਲੂਗਾ ਫੈਸ਼ਨ ਆਈਕਿਊ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਫੈਸ਼ਨ ਆਈਕਿਊ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਗੂਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੈਸ਼ਨ ਆਈਕਿਊ 905-453-2225 9054532225 ਫੈਸ਼ਨ ਆਈਕਿਊ।

सानू को जीवेख ना छड़ वे तुसा भले दे हाथ लजवे सानू को जीवेख ना छड़ वे असा छड़ना ताड़ा दरना असा छड़ना ताड़ा दरना ताड़

0: दे वीजे री सुपरवीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है। मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है।
1: शमी पठल होरा ने तुहाडा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है।
2: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल।
0: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दी बेस्ट डील ले। याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
2: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले 100% कैनेडियन मेड, टॉप क्वालिटी स्वीट्स, हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: ओहो, सर्दी च हीट नहीं चलती ते गर्मी च एसी।
2: ले आपा हुणे करदे आ संधू साहब ना गल ते करदे आ मसले दा हल।
1: एसी, फर्नेस, गैस लाइन, वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन, नव एयर कंफर्ट ते जतिंदर संधू नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल 647-706-6640।
3: 647-706-6640।
4: रोकी, तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करो।
5: काका,

0: डॉलर फॉर टू कोई दे पाएगा कि नहीं? मैं आपसे पूछता हूँ, खाना चाहोगे कि नहीं?
1: क्यों नहीं खाना चाहेंगे? तवा किचन दे रहा है ना, अमृतसरी कुलचा 2 for 10, बिरयानी 2 for 10, न्यूट्री कुलचा 2 for 10।
2: अरे बस बस, फोन नंबर और एड्रेस तो दो।
3: तवा किचन @30 Rambler Drive, ब्रैम्पटन, क्लोज टू कैनेडी एंड स्टील्स, 905-452-2600, 905-451-2600।
2: इतना ही नहीं, ग्रैंड अपनी स्पेशल और भी आइटम है $10 for 2।
4: यार लास्ट वीकेंड असी तवा किचन तो केटरिंग ऑर्डर कीता सी, ऑनेस्टली बेस्ट डिसीजन सी। हाँ ब्रो, फूड वाज अमेजिंग, फ्रेश, हॉट ते फुल टेस्ट वाला। गेस्ट्स भी पूरे इंप्रेस हो गए, सर्विस भी टॉप नॉच सी, टाइम ते डिलीवरी, प्रॉपर पैकिंग ते सब कुछ ऑर्गेनाइज सी। मेन्यू भी बहुत फ्लेक्सिबल सी, करीज, रोटी, राइस, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। ऑनेस्टली असी तां हुण हर फंक्शन लई तवा किचन ही चूज करांगे। Try Tawa Kitchen for the best catering in town. Fresh food, great service and unforgettable taste. Book your next event now. 50 Sunnyvale Gate, Brampton, 905-790-1699. 905-790-1699.
5: ओ यार, बिजनेस का माड़ा हाल होया पे, कितनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
6: निर्बल बाबे ने क्या से कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो, पर कृपा तो हो ही नहीं।
7: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ली पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
8: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता?
9: रेडियो आवाज, रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक, प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200।

चंद लाइनें ऐसी हैं जिनसे महसूस होता है कि चमनलाल चमन अपने वतन को कितना मिस कर रहे हैं, कितना महसूस कर रहे हैं।

0: गया खुल गया खुल गया सच्चा सौदा गुरु नानक मोदी खाना कपड़िया दा शहर नकोदर विच बस स्टैंड दे नेड़े सिविल हस्पताल वाले रस्ते विच खुले कपड़े रेडीमेड सूट कोट पेंट सोनिया दस्तारा कुर्ते पजामे व्याह शादियां वास्ते दाज ते वरी बनाउण वास्ते याद रखो गुरु नानक मोदी खाना नकोदर दे विच एक मोल दी दुकान जदों भी इंडिया जा रहे हो नकोदर शहर दे विच गुरु नानक मोदी खाना कपड़िया दे स्टोर ते जाओ अते पैसे बचाओ होर जानकारी वास्ते 9012791127 ते कॉल भी की जा सकती है 90127 9127 ते कॉल भी कर सकते हो।
1: अज दे समय विच हर मापे दी इहो इच्छा है कि मेरा बच्चा पढ़ाई विच भी अगे होवे ते अपनियां जड़ां अपने संस्कारां ते अपनी पछाण नाल भी जुड़िया रहे। इस सुपने नूं साकार कर रहा है गोबिंद सरवर स्कूल। साडा मनना है कि असल सिक्ख्या ओ है जो बच्चे दे दिमाग नूं ज्ञान दिल नूं संस्कार अते जीवन नूं मकसद देवे। बेहद खूबसूरत जिंदगियां बनाउण लई वचनबद्ध है गोबिंद सरवर स्कूल। गोविंद सरवर ब्रैम्पटन की नवी लोकेशन आ रही है कॉर्नर ऑफ एयरपोर्ट रोड एट क्वीन स्ट्रीट। जेके तू ग्रेड 10 तक रजिस्ट्रेशन करने लई संपर्क करो 9054586222।

0: Visa Medical Insurance. Number hai ga ji 416-817-6500. This is Harpreet Saini, Charter Life Underwriter and Certified Health Insurance Specialist from Top Choice Insurance Agency.
1: जब HK Movers का हो साथ, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात. HK Movers, होम, ऑफिस, अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी, बिग और स्मॉल, वी मूव इट ऑल. वी ऑल्सो शिप कार्स, वी ऑल्सो डू स्टोरेज. 30 years एक्सपीरियंस, वी सर्व विद अ स्माइल. HK Movers, गिव अस अ कॉल. मिस्टर हरमिंदर, 416-524-6704. 416-524-6704.
2: हैसल फ्री मूविंग के लिए HK Movers. इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश. खरीदिए जेटीए में कहीं और ना मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से. और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट. 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन. 9054586808.

0: या फिर तीजे लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूट लैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड ब्रैम्पटन वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूट लैंड 9054569900
1: A to Z किचन कैबिनेट भाई वाह क्या किचन कैबिनेट तैयार करदे हन लक्की भाजी दीआं बणीआं किचन कैबिनेट देख के गुआंढ वी बहाने नाल तुहाडे घरे आउंदे हन शीशे नाल भरीआं किचन कैबिनेट वास्ते डिजाइनर किचन कैबिनेट वास्ते A to Z किचन कैबिनेट 4167207073 9057207073 ते कॉल कर सकदे हो
2: यार इना इंश्योरेंसा ने ते धुआं कढ़ाता वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा
3: टॉप फाइनेंशियल इंक तो जो अपनिया बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने
4: क्रिटिकल मॉर्गेज आरईएसपी आरआरएसपी विजिटर इंश्योरेंस सुपरवीजा स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स जे थोड़े कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने ता थानू अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे
3: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 6473300310
4: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन
5: You're listening to Punjabi Versa Monday to Friday 11 a.m. to 12 p.m. For more information call 647-448-1000
6: Toronto's number one station AM 530
7: Punjabi Versa

है भाई जान आपने, तो सितंबर 18 फ्राइडे नाइट 7 बजे लिविंग आर्ट सेंटर पे पहुंचना है, क्योंकि टिकटें ticketmaster.ca पे अवेलेबिलिटी है। ticketmaster.ca पे पहुंचो, टिकट

0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: हेलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।
2: हां जी कटारिया टूर एंड ट्रैवल।
1: इंडिया दी टिकटां चाहिदियां सी।
2: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटां ले लो। इंडिया किथे जाना?
1: चार टिकटां दिल्ली दी ते दो अमृतसर दी मिल जाणगीयां?
2: मिल जाणगीयां, बिल्कुल मिल जाणगीयां। दिल्ली मुंबई अमृतसर एहो तां साडी स्पेशलिटी है। बस दसो की टिकटां कदों दी चाहिदियां ने। ते हां स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने।
1: भरोसेमंद सर्विस ते सब तों वधिया रेट्स लई इक्को इक नाम कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल। बुकिंग लई अज ही कॉल करो 905-678-1200 कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।
3: 32-55-80-98
1: गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो?
3: ओ, काउंटिंग नहीं, ए ते 32-55-80 ते 98 इंच दे टीवी ने जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे, हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते। 32-98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
1: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी। कॉल 905-450-2828 905-450-2828।

गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टाला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशा वादियां, उम्मीद करते हैं कि तुहाडा अज्जा दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साडी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नैशनल इंटरनेशनल खबरां नाल जोड़ के रखिए। अगे चल के सुखी निजर साहब वतनों दूर तुहाडे लई पेश करनगे और मनप्रीत जी हिंदुस्तान तो खबरां भी पेश करनगे। 2 बजे तक साडे स्टूडियो दे नंबर रहणगे 905-799-0999 शाम नूं मामा आएगा ते 4:42 ते सवेरे चले जाणा। अज सारा दिन बदलवाई झखड़ झोले, बारिश पेगी, थंडरस्टॉर्म आउणगे, तापमान 25 डिग्री। कल नूं सारा दिन बदलवाई देना, हल्की हल्की बारिश, तापमान 24 डिग्री। थर्सडे नूं मिक्स एंड क्लाउड, तापमान 27 डिग्री। फ्राइडे 28 डिग्री, सूरज चमकदा रहेगा। सैटरडे 27 डिग्री, मिक्स सन एंड क्लाउड। संडे नूं बारिश पैण दे फुल आसार नजर आउंदे ने, तापमान 28 डिग्री रहणगे। अज टोरंटो दे GTA विच भारी मींह दा अलर्ट है। 75 तों 100 मिलीमीटर जिहड़ा बारिश आ उह पै सकदी है। नाइजीरिया तो खबर आ रही है, टारगेट कम्युनिटी नूं इक नूं कीता गया जिथे दर्जन दे करीब लोकां दा कतल कर दिता गया। उधर यूनाइटेड नेशन वालां ने आर्डर कीता इजराइल नूं कि जिहड़ी आकूपेशन है उस नूं खत्म कीता जाए। जिहड़ी रेक्सडेल मर्डर होया सी, अपनी एक लड़की दा कतल कर दिता गया सी जिहदा नाम नवनीत कौर 26 साल है। उस सिलसिले च 37 साल शरणजीत नूं फड़िया है। पुलिस ने यह दस्या कि इहदे फर्स्ट डिग्री मर्डर दे चार्जस लगे ने और इह ते पहलां भी इंटीमेट पार्टनर असॉल्ट दे चार्जस लगे ने। सौप च इक दूजे नूं जाणदे सी, ऐसी गल नहीं है। ते उहदा पिछा पुछा भी करदा रहा इह बंदा। टिक्का जंक्शन लई 6474294040 केटरिंग करानी है छोटी वड्डे फंक्शन लई, नो प्रॉब्लम। 6474294040 लाइव कुकिंग करानी है करे, नो प्रॉब्लम। 6474294040 तुसी इन्हां दे बैंकुट हॉल या लॉन्ज विच छोटी वड्डी पार्टी करनी है, नो प्रॉब्लम। 6474294040 647-429-4040। मॉर्गेज सॉल्यूशन दे गुरप्रीत समरा जी, तुहाडे मकान दी रिन्यूअल आ रही है, तुसी अपनी मॉर्गेज BC लैंडर तो हटा के A लैंडर नाल करवाउणी है और इंटरेस्ट रेट ते भी बचत करनी है। कॉल 905-460-9099। प्री अप्रूवल भी करवा के दिंदे हन तां कि कॉन्फिडेंस नाल मकान लै सकदे हो। 80-90 हज़ार बेस नूं बनाउण लई चाहीदे ने, मकान लैण वेले इस दा भी अरेंजमेंट कीता जांदा है। गुरप्रीत समरा नाल बैठ के डिस्कस करो। 2155 B स्टील्स एवन्यू नियर टॉप रूम यूनिट 32। 905-460-9099 इन्हां दा नंबर है। सज्जणा, रब कोलों मंगणा छड्डो, मेहनत करो, रब आपे देवेगा। जिस दिन रब मंगण ते आ गया ना, आखरी साह भी लै जाएगा।

जी दोस्तों, प्रोग्राम समाप्त करना समा आ गया ते सानू दे विथों इजाजत। खुश रहो, जिंदाबाद रहो, कल नू फिर इस वे तुहाडी ते मेरी सांझ बनदी रहेगी। ते जद तक रब रखा, सत श्री अकाल जी।

0: फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: कनाडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
2: ऐसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस दे सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
3: जेकर तुसी भी किसी तरह दे लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते
1: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-456-3381 416-457-3381
4: दोस्तों देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो नु या चलो एएम 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उहनां नु सुनण वास्ते जां देश प्रदेश नु लाइव देखण वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नु www.deshpradeshradio.com या www.deshpradeshtv.com लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो जे वाच करना चाहुंदे हो तो ओह ते क्लिक करो या फिर अपने IPTV बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सेक्शन क्लिक करो ओदे उत्ते जाके देश प्रदेश टीवी नु क्लिक करो ओत्ते तुसी सुन भी सकदे हो वेख भी सकदे हो 24/7
5: तुहाडियां कारां दी तसल्ली बख्श मरम्मत लई ANJ ऑटो रिपेयर बोल्टन दे विच हन हर मेक ते मॉडल दी कार दी रिपेयर कीती जांदी है सेफ्टी इंस्पेक्शन फ्री एमिशन टेस्ट न्यू ते यूज्ड टायर पवाओ रस्ट प्रूफिंग दा काम ऑयल चेंज ब्रेक जॉब ट्रांसमिशन इंजन दा कोई भी काम होवे अज ही अपनी कार नु लेके आओ हाईवे 50 ते मेफील्ड दे नेड़े नंबर 91 हेली रोड और होम डिपो दे नाल अज ही कॉल करो परमेंद्र सिंह होरां नु 905-857-75-96 ANJ ऑटो रिपेयर जेडे के बोल्टन अते ब्रैम्पटन दे बॉर्डर ते ने
4: सस्ती ग्रोसरी और हरियां ताजियां सब्जियां लई शहर दे विच इको एक नाम सत शिखामा तो इंडियन फ्रूट लैंड ते नाल ही है इन्हां दी तंदूरी ग्रिल बाहरले पासे इत्थों तुहानू बणिया बणिया हर फूड मिलदा है नाल दी नाल रॉ मीट भी और मैरिनेट कीता मीट भी तुसीं लिया सकदे हो अपने नेड़ली लोकेशन ते आओ 45 डस्क ड्राइव फ्रिपन फेंडर वे ब्रैम्पटन 9985 मक्वीन ड्राइव ब्रैम्पटन 1465 मेफील्ड रोड ब्रैम्पटन 33 फार्ली ड्राइव गोल्फ और 600 हैस्पलर रोड कैम्ब्रिज नमी खुली ब्रांच 25 सेंट्रलवुड पार्कवे कैनेडी के सेंट्रलवुड पार्कवे के नेड़े आओ हरियां ताजियां सब्जियां और जी सस्ती ग्रोसरी वास्ते पहुंचो इंडियन फ्रूट लैंड से

0: एक चक्कर लगाओ।
1: हेलो AM 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो।
0: टुडे विच लाइव गलबात कर लई हुणे कॉल करो 905-564-6444।
1: 905-564-6444।

0: ca. मैं थोड़ा अपना वकील वकील ब्रिज मोहन पिछले 32 सालों तो अक्रॉस कैनेडा कार एक्सीडेंट लगियां गंभीर सट्टा पुलिस द्वारा लाए गए संगीन क्रिमिनल चार्जेस अते सीरियस इमिग्रेशन केसेस नाल कोर्ट कचहरियां च निजिठण दा साडा पूरा तजर्बा है। कार एक्सीडेंट दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलन लई नहीं सी आख्या, पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनूं इह कहिंदे होए बहुत ही माण महसूस हो रहा है कि असीं कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी सहायता करते हैं जिसते वो सचमुच ही हकदार हैं। थोड़ा अपना वकील वकील ब्रिज मोहन। कॉन्टेक्ट अस एट bridgemohan.com।
1: Get ready! GTA